0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: बैंकले कभैले कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन। यदि कसैले कसै माध्यम बठियाइलै तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दु खोज्दछ। सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित गरौं। उनीहरू विवरण मागिबर बैंकमी सोधौं सतर्क रहौं ठगी बठिए बसौं।
2: सिद्धार्थ बैंक बठियाई जनहितमी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैव भरिलाई।

0: नेपालमा पाजिना बिखा साँपनको विषयमा सुन। एक ठोरठ गरैचा जोन खास कैख रातिक समयमा घर भित्र पैठ सेक्छ यी कटला से निबठाई फे स्याकत तर कटला पाछ देह भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्व हुई सेक्छ और रठ डोम जोन बड़ा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाट फुले थ डोम साप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कैख संजा बिहान देख पर्छ निकर कटला से फे लक्व हुई सेक्छ ओ और रठ कैली जातक साप निकर कटला कल से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर रसे बठे था रकत थे पाची रोकर रकत बहना हुई से था उसने कहा हमार देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रहना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा।
1: बर्खा छाको अनाज भिजिना समयमा सापनका कटाई अथवा दसाईका घटना ध्युर मिलाका था बैया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनका बचारा नासिबेस सापनका दसाईका घटना ध्युर मिलाकर लगपा दे
2: झुर जसिन सापनका दसाई हानिकारक नि रहा उहो फिर यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाई पर
3: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै था।
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046 77417
1: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98 484 22 373।

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকাল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহাঁ আপন অনুহার বিগড় কে ঘর সে বাহির নাই নিকরছু।
0: উহে মারি তো তুহিন উহাঁ পাঠাই তো। ইহাঁ হের ই পত্রিকা মে লিখাল বা মনীষ মেডিকাল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হইছে উপচার হুইটা ওই তোর সমস্যা ফেন আসতে বা যাইবে তো সমাধান হই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগড় কে পরিশান রহু তব তো মই অব্যহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: टीकापुर नगरपालिकाको सूचना।
1: टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 बमोजिम कर तिरी नगरको विकास निर्माणमा सहभागी बनौ।
4: नगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर चुक्ता नगरे नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नगरपालिका कार्यालय बाध्य हुने छैन।
1: कर तिर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो भने सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार हो।
4: त्यसैले कर तिरौं सभ्य र जिम्मेवारी नागरिकको परिचय दिऊ।
1: समयमै कर तिरौं जरिवानाबाट बचौं।
4: कर सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यालय राजस्व उपशाखाको फोन नम्बर 091560883 सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो भए सुन्ती रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से देशभर मनसुनी वर्षा शुरू कुछ स्थान में भारी पानी पर्न संभावना सतर्क रहना नागरिक पूर्ण मौसमविद के आग्रह गर्मी बढ़ल संगे टीकापुर में दूध खपत फिर बढ़ल उपभोक्ता हुकरण दूध पुगैने नहीं सकल डेयरी संचालक हुकरण के कहा टीकापुर क्षेत्र में धान रोपायो दही चूरा खाके धान दिवस मनाया गेल कैलाली के तीन जाने किसान सम्मानित हो असार 17 गति के लाख बुरागिल नगर सभा कानून विपरीत रहल नगर नागर जी के कहाई। आप पूरा खबर मानसूनी वायु के प्रभाव के कारण देश के अधिकांश स्थान में वर्षा हुई रहल बा। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश के मानसूनी वायु के प्रभाव देख पड़लक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। मानसूनी वायु के प्रभाव के कारण स्वरूप पश्चिम कर्णाली प्रदेश के अधिकांश स्थान में फिर वर्षा होती रहल बा। गैल रात से लेकर शुरू हुई वर्षा काल समेत जारी रहना मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पाछक 24 घंटा में कंचनपुर के हनुमान नगर में भारी वर्षा मापन करल बा। हनुमान नगर में 24 घंटा में 94.6 मिलीलीटर वर्षा मापन करगिल बा। उस्तांकर के बैतड़ी के गोकुलेश्वर में 52.4

0: तिलक धान दिवस खेतोमा काम करके दही चूरा खाके मनागिल बा काम के ढेर चा प्रलकोर से थकी त्रलक किसान उकरण शक्ति प्रदान करे गई दही चूरा खैना चलन बा ई बेला दही चूरा से शरीर में शीतलता हुके शक्ति संचय हुना विश्वास करिल बा खेतीपाती बाहेक केवरे पेशा व्यवसाय में लागल नेपाली हुकर फे दही चूरा खाके असार 15 मनेना चलन बा नेपाल में विक्रम संवत 2061 मंगसिर 29 गते मंत्री परिषद के निर्णय करके 2062 असार 15 गते से लेके राष्ट्रीय धान दिवस मनेना लागिले हो। खोजखबर में एक घड़ी फेन से विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीका प्रफम
1: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान
2: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह से अपन निर्वाचन क्षेत्र में सामाजिक विकास मंत्रालय मन से 118 योजना में बजेट छुट्याई भेटाइल बा। असिके वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार मुख्यमंत्री शाह से सामाजिक विकास मंत्रालय से कार्यान्वयन हुना विद्यालय भवन खेलकूद पूर्वाधार निर्माण योजना में 47 करोड़ 31,04,000 बजेट धारल पागिल बा। वहां निर्वाचन क्षेत्र में पर्ना लम्कीचोहा नगरपालिका, महन्याल गाउँपालिका और जानकी गाउँपालिका के समेत मुख्यमंत्री शाह से विद्यालय भवन, खेल मैदान, कैंपस भवन, उसक अस्पताल भवन जैसी योजना में सामाजिक विकास मंत्रालय से बजेट विनियोजन करल देख पड़ल बा। सामाजिक विकास मंत्रालय से 89 योजना बजेट दार्गिल पागिल। मुख्यमंत्री शाह से कानूनी मंत्रालय में 27 योजना में बजेट दारल बा। आपन निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालय भवन निर्माण और मुख्यमंत्री शाह से 19 लाख के दर से 91 विद्यालय में समेत बजेट दर्ती रहल। मुख्यमंत्री शाह के चर्च माफे समेत गुरूकुल औसत खेल मैदान से लेके सामुदायिक भवन माफे बजेट छुट्यागिल बा। लम्कीचोहा 3 बलचौर के चर्च सभा हल निर्माण में 38 लाख बजेट छुट्याल मुख्यमंत्री शाह से। लम्कीचोहा 1 में रहलक शिवशक्ति श्री विद्यापीठ गुरूकुल में विद्या आश्रम के लाग 24,000 बजेट विनियोजन करल पागिलबा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्न लगभग सकु विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न खेल मैदान तयार गर्न तथा लम्कीचो अस्पताल क्याम्पस के भवन निर्माणमा मुख्यमन्त्रीले बजेट विनियोजन करल बाटे। यी वर्ष 23 औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2083 के अवसरमा सोमबार कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीसे यहाँके स्थानीय तीनजन किसान हुकरन भीमदत्ता उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार 2083 से पुरस्कृत करलबा। लम्बा समय से व्यावसायिक कृषि पेशामा आबद्ध घोडाघुडी नगरपालिका दुई के माछा पालक कृषक मनोज खनाल, घोडाघुडी नगरपालिका आठ के तरकारी खेती करते रलक धनबहादुर चौधरी, चुरे गाउँपालिका एकमा फलफूल खेती करते रलक रीता कुमारी देउबाहे, जनही नगर 25,000 प्रमाणपत्र औ दोसल्ला ओडाके सम्मान करगिलबा। नेपाल शिक्षक संघ के अछाम के अध्यक्ष नवीन्द्र राज जोशी की निधन हुइलबा। टीकापुर घर रहल अछाम के साफेबगा नगरपालिका एक ठेंगाल गांव बैठना मास्टर मन्दौ आधारभूत विद्यालय पायलमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक संघ अछाम के अध्यक्ष जोशी अतवार के मूल बतागिलबा। जोशी के सब टीकापुर लानगिल सोमवार संकटी स्थित के कर्णाली लडियामा अन्तिम संस्कार गर्न कहलबा। जोशीके निधनमा आसाम के समय शिक्षा क्षेत्र टीकापुर शोकमा डुबलबा। ओ फिफा विश्वकप 2026 समेत फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत के राउण्ड अप 32 के खेलमा ब्राजिल जापान हे प्रायोजित गर्ती जीत हासिल करलबा। अमेरिका के हुस्टन खेल मैदानमा हुलक खेलमा ब्राजिल से जापान हे 2-1 से अन्तर से समेत प्रायोजित गर्ती विश्वकप के अन्तिम 16 प्रवेश करलबा। यही समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। देशभर मनसूनी वर्षा शुरू, कुछ स्थानमा भारी वर्षा के सम्भावना रहेको छ, सतर्क रहन नागरिकहरूलाई मौसमविद के आग्रह। गर्मी बढ़ल संगे टीकापुरमा दूध के खपत बढ़ल, उपभोक्ता हुकरा दूध पुगै नै सक्ला डेयरी संचालक के कहाई। टीकापुर क्षेत्रमा धान रोपायो दही चिउरा खाके धान दिवस मनागिल, कैलालीमा तीन जान किसान हे सम्मानित। ओ असार 17 गते के लग बोलाइल नगरसभा कानून विपरीत रहल, नागरजी के कहाई। रीता बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM सुनते विराम राम।
7: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। उच्च जीवन स्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो।
8: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू BE कम्प्युटर, BCA, BBA, BE सिभिल का साथै MBA कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइसक्न हुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
7: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास, उत्तर भेडी 4 धनगढी, फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949।
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म, टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार,
4: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
9: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू:
4: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
9: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
4: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
9: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
4: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाई लगायतको उपचार,
9: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
4: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर।
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
9: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72।
10: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान रिथाई घरक भिटा आम निके निवराई छ कि का खेतो म सखलाबन कला मिनी लै जाय पना रह
1: आबो ओराइदा गांती बादा
2: ले ले वही मिनी बना कर नहीं दिया तू लै जा दियस ना।
1: हाँ मीठा दाई ओहो हेरो यहाँ भिटा मत ढिला को बा माटी ने तब दिए पर टीका हाँ सब दियो अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटन छाई
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल
2: अरे ले हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान मत सब का डरलस ले हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपवा करलस करब
3: ना त्याव काकी तो मुस्कान न्या त्या का स्थान थो तो बैठो ना बेन काकी मुस्कान हना स्वास का ना सुटाई हल सब निका राखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास का सुटो ता
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फासर बना दी ता वो हाथक चुड़िया की निकाल दी ता वाकर कटला हाथ भर नहीं चलाखना
2: बैठा भैया सबको कर लगता हूँ आंगर पांगर चीर का इंजेक्शन ले तान का अथवा मुंह ले सूस का बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबको कर लगता हूँ आंगर पांगर कटना दगना सूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से झर मेरा लान था वही नीटा था वाकर सबको कर लगता हूँ मल्ला आदि उठा ना ना नू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानु बुझनु
3: बिना काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लिखाए कभी तो झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिला स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाए सेक जाए दादा का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल .org का वेबसाइट खोलती का तुम्हें हाँ दाता हम कही का हरा पुरा हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल .org वेबसाइट फिर खुला हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था को सर पर दंश उपचार कई जिना रही था हो वहाँ ले जाए पर मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला
3: ले ले ले काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में वही ठाला रही था झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कला से मुस्कान हना बताई सेक जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहाँ कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो न व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खस्तम जनस्ताप फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखा सकले से भूकर सपो विषहार अलग निरलग पहचान कई खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मने यहाँ बताई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सकती था सपवा डसलक मन यहाँ ना झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली इहिले उ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई था पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
7: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव और शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
6: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
7: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे, जय से जय।
6: हिंसा अपने थेनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

0: टाउकोबाट कसरी बच्ने?
1: बाहिर निस्कदा टाउको, कान र गर्दन कपडाले छोपेर हिँड्नुपर्छ वा सिधै सूर्यको किरण छालामा नछिर्ने तर हावा छिर्ने खालका कपडा लगाउने।
0: खेतबारीमा काम सकभर बिहान वा बेलुका मात्र गर्ने।
1: बिरामीले पटक पटक गरी पानी पिइराख्नुपर्छ।
0: कहिले पनि खाली पेट बस्नु हुँदैन, यसले समस्या थप बढ्न सक्छ।
1: गर्मी मौसममा काँक्रो, प्याजको रस, बेल, आँप, कागतीको शरबतको सेवन गर्नुपर्छ।
0: चिनीको मात्रा बढी भएका झोल पदार्थ बढी नपिउने, जस्तो चिया, कफी, सोडा जस्ता पिय पदार्थ।
1: नरम मुलायम सुतीको कपडा लगाउने।
0: व्यायाम गर्नु पर्दा बिहान बेलुका रुखको छहारीमा मात्र गर्ने
1: र बालबालिका, वृद्ध तथा दीर्घ रोगीको विशेष ख्याल गरौ।
2: टिकापुर नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाएं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था। तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी ही जाए।
2: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: ई लड़का के कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कही था, कब्बू पेंसिल हेरा कही था, कब्बू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो, वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुही।
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: आइगई क्या? आज त पहिला नौकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
1: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भन्या बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ नि त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
0: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
1: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, हैन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हरे।
2: आई बुढल्ला, सुन्टो कि नै वानन्दे गोज आगिलि न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना हुने ना पट्टा नि पैना त।
3: अरे गहना बनाइन त हो, दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु, कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
2: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कान लबाटी।
3: ए ले ले ठीक है बा, चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स, बलभद्र चौक चिकापुर, प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 98-684-41-208 ओ 98-486-39-261।
4: कार्यक्रम छोट मीट साता के बुधवार दिन के एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
5: जब देखनो तुहिन है,
4: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के भी सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-5162-55 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: उही सबै पेपर अर्को सकिया हो
1: सकियो
0: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकमको अफिस जाइबर ब्लक गरिबर आयौ
0: उही बैंकमी
1: बैंकमी
0: हाँ
1: ता क्या अद्दु पड्यो भ
0: त्यो त अद्दु पड्छ भ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई नै जानकारी दिनु पर्छ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमी पुग्दु बठे सचेत बनौ
1: सतर्क रहौ ठगी बठै बचौ
2: सिद्धार्थ बैंक पठै जनहितमी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
2: एसईईमा मौका परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको जरूरी सूचना
4: भीमडट्ट नगरपालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको साझेदारीमा सञ्चालित महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अन्तर्गत 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सामान्य चिकित्सा नेत्र विज्ञान डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन भइरहेको जानकारी गराइन्छ
2: साथै शैक्षिक सत्र 2083-84 प्रमाणपत्र तह नेत्र विज्ञान अफ्थाल्मिक साइन्स मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी कार्यक्रममा केही सीट रिक्त रहेको हुँदा एसईको मौका परीक्षामा सम्मिलित प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला
4: भर्ना हुने विषयहरू
2: मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी
4: नेत्र विज्ञान ओए
2: अनलाइन फारम भर्ने मिति 2083 असार 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म आवेदन शुल्क ₹1,000 मात्र
4: थप जानकारीको लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर सम्पर्क फोन नम्बर 0969900044 9857880044 र 9762833921 वेबसाइट www.mahakalishikshalaya.edu.np
5: औ वहाँ 62 नम्बर लट्ठी बा देखाओ त कस्तो लेखाओ त
6: मुर्गिन दाना देना जाला म काकर लट्ठी खा दे अब न
5: एक फो तपा बाका मुर्गिन खा रखे लट्ठी से बिगड़े से बक्सा की आनो हरी छत
6: तापन घिस्काई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस श्याकर बेन घर भीतर आई लाई कल से भगे भी
5: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं का भगाए खोज लखो का
6: आरम कीड़ा फटिंगा मुझ सांप सिर निशा करके फलाम को जारी लगा बात तपा मुर्गिन खेती पुगाइनु थिए कि बिहान अपराह दाठी डुलो र बिना
5: हो बिना त का गर्न हो तपा देख्ति कि डर लागेर बिना रहेछ देऊ तपा त अपना घुमका बारी ओर कल गिन्छ
6: हाम्रो खेल सापन से डरै नानी बोली मुख्र थिए अमन से डरै था यदि क्यों जान अनजानमा चलै लगी पति रक्षा करत लाग वा आपन बचाउ करत लाग साम दसना कथा
7: सापन से दूर रही सापन रिस नि लगाई वा नि जिस्कै साप मनै देख डरै था निचलाख डुर रहेछ साप नि डस्ट तर हुक्र खैना खाज बाहिर निस्कने बेला घाँस काटा बेल छाल बेल ड्याङ्ग बेल छुबेछ मनै मही मारकबाट कना सबस्क पट्टि र छ्याकना क्रम साप दस लाख मनै सापन व्यक्ति कि मारक लाग रह ओसी कर बेल फेर साप दस लाख
8: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँबाटै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेक्दिथा
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटाका आज था, कहा का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हेरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बर बर
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिप ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठिनी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
5: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
6: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।

0: आइगई क्या? आज त पहिला नौकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
1: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
0: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
1: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हरे।
2: बाबु अपने कलका लाइट रही, अपने काकर कलका लाइट रही, ले भुइया में के हो काकर भुइया में ढनवा नाली बाटी।
3: सुनिना दादू, हमरा दुनू जना बना में घास काटा रही, मौसम भी सब पका दिना दादू, हाल क्या करना हुई यही ना सत्य हो पता के नुका पहले से मिले रहा।
2: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठे नहीं हुई। यह लग गया बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई डालू अपने नहीं आता है ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश, तू झट्टे ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल। राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाऊ पांचर बाटी ना हमरा। मुकेश झट्टे ही आओ, हाँ सबकू काम छोड़ कर
4: बेटा संतोष, मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू झट्टे।
2: सुन बाबू, सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता। ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन बाजे पड़ता। यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेरे से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुराई पड़ता। मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भर पर संघरिया, मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच ऐसी बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डाल हूँ अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
3: लगा
5: देली दादू करी। से मोटरसाइकिल स्वयं से दी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई।
6: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मनिन बचाई सक दी था, वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था। सांप डसलक मने न छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी, यही ले ऊ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था। विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था।
7: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागु औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
1: यही असार 20 गते तेस्रो शनिवार को दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागु औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
1: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 98 68 80 00 08 र 98 25 63 77 72।
4: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्दै भो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
5: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो नि करत का कैन हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, काकना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कब्बू लड़का कभी हेरा कही था, कब्बू पेंसिल हेरा कही था, कब्बू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी, ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिकला झोला है मरमर फेकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाख सक्कू जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी सन्देश।
2: एसईई मा मौका परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको जरूरी सूचना।
3: भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको साझेदारीमा सञ्चालित महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अन्तर्गत 3 वर्ष प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सामान्य चिकित्सा नेत्र विज्ञान डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
2: साथै शैक्षिक सत्र 2083-84 प्रमाणपत्र तह नेत्र विज्ञान अफ्थाल्मिक साइन्स मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी कार्यक्रममा केही सीट रिक्त रहेको हुँदा एसईईको मौका परीक्षामा सम्मिलित प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
3: भर्ना हुने विषयहरू
2: मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी
3: नेत्र विज्ञान ओए
2: अनलाइन फारम भर्ने मिति 2083 असार 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म आवेदन शुल्क ₹1,000 मात्र।
3: थप जानकारीको लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर सम्पर्क फोन नम्बर 0969900044 9857880044 र 9762833921 वेबसाइट www.mahakalishikshalaya.edu.np।
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। उच्च जीवन स्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो।
1: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू BE कम्प्युटर, BCA, BBA, BE सिभिल का साथै MBA कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइसक्न हुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
0: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर भेडी 4 धनगढी, फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949।
2: टिकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना। टिकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2082-83 भएको सेवा प्रवाह सम्पन्न आयोजना कार्यक्रमको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई हुने भएकाले टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, बर्घर सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवीहरू लगायत सरकारवाला सबैलाई वाडाको काम र सेवा प्रवाहका बारेमा प्रश्न, सुझाव, गुनासो र सल्लाह सहित सहभागिताका लागि अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 21 गते, समय बिहान 8 बजे, स्थान 1 नम्बर वाडा कार्यालय, नगर विकास समितिको भवन सिटी हल नजिक, टिकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालय।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस्तो?
4: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर्के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपारके तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दे घुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261
2: दाई नाजबा कहाँ जाए लग बता
3: ये सब लगता चर्पी जाए टुका
2: ए रुको ना तो कोशिश हो कल से मैं टॉर्च लाइट और लट्ठी दिए तू ले खजाव
3: काजे सुनो लट्ठी और टॉर्च लाइट
2: कहाँ कर रही दाई रात एक बेला बाहर निकल पड़ला से वाटवाइलिंग जाए पड़ला से जहाँ फिर टॉर्च लाइट बार खा वो लम्बा लट्ठी ले खजे ना जाए पड़ता कहाँ कर की बरखा छट बा सांप रह से था टॉर्च का उजाले सापन दिया खसे गई था वो लट्ठी ठेक ठेक आवाज सुनकर साफ भग ठगा
3: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोट की छाई
2: दाई हमन्ना स्कूलिक मैडम सर मुकर साथ मुकर से इतना ठाउसी न्यांग पड़ला से वो काम कर पड़ला से जहाँ फिर ठप होशियार भी पता गई खा सीखे लगा ठगा आम हो छटवा दुभा झपा अथवा ध्यान घर चलक ठाउ में न्यांग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठेक ठेक बजेटी न्यांग पता गई खा कल बाट
4: सात बरखा छाटक समय में सुक्खा ठामा बैठ मन पड़े था इ मौसम में आपन बसियारा में पानी पैठना पिलापुर से सुक्खा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
5: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग आई सक
3: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई थ पता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
0: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्याक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
7: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
0: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
8: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
7: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
9: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
0: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28

0: कबू कापी रेठ कबू पेन्सिल रेठ कबू झोले फटाका आजिठ काकना हो काकना हो बाबा फिर ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: तो कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में
2: रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
4: घर त जेन तेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
5: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
4: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
5: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
4: अब त म ढुक्क
6: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
5: मोबाइल नम्बर 98481-43-26 जमरापारी टिकापुर कैलाली
7: बैंकले कभैलाई कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन यदि कसैले कसै माध्यम बटियाईलाई तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दो खोज्जाछ सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित गरौं उनीहरू विवरण मागिभर बैंकमी सोधौं सतर्क रहौं ठगी बटिए बचौं
8: सिद्धार्थ बैंक बटियाई जनहितमै जारी सन्देश
9: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैव भरिलाई

0: सामुदायिक रेडियो टीका प्रश्न के संझे 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उखरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल हमारा पात्र नेपाली पात्र मफे सुनती रहती। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से विद्यालय आंध्र प्रदेश निर्वाहित रूप में सूतीजन्य पदार्थ बिक्री करी थी। ये विद्यालय उमेर के बाल बालिका में असर पड़ती। जानकी गांवपालिका 9 नंबर में वडा हलन सब चिस्या मेसिन। संचार मंत्री द्वारा गुणस्तरीय सेवा दिन नेपाल टेलिकम महानिर्देशन। देशभर मनसूनी वर्षा शुरू। कुछ ठाउँ में भारी वर्षा के संभावना। सतर्क रहना नागरिक मौसम विद के आग्रह। कैलाली में विद्यालय आंदर पादर संचालित होटल व्यवसाय में निर्वाध रूप में सूटी चुरोट और गुटखा के बिक्री हुटी रहवा। सूतीजन्य पदार्थ के विक्रेता बिक्री केलाक अनुमति लेह पड़ना कानूनी व्यवस्था उल्लेखे। यहां विद्यालय लगायत के सार्वजनिक स्थल आंदर पादर किनारा पसल फलफूल पसल घुमती पसल सूटी चुरोट बिक्री करके प्रयोग केलाक सजिलो बनाया दिलवा। जिला अनुगमन समिति के कैलाली के ढेरसिन पालिका में करलक नमूना अनुगमन में जिला के गोदावरी नगरपालिका टीकापुर नगरपालिका कैलाली गांवपालिका लगायत के पालिका में विद्यालय लगायत के सार्वजनिक स्थल में आदर पादर निर्वाहित रूप में सूतीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण हुटी रहल पाइगिलवा। यहसंग निशोधित क्षेत्र टोकना अभ्यास हुई नई सकलक। स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली की जनस्वास्थ्य निरीक्षक विमला ग्यौली बोटिल टीकापुर के गणेश बाबा बोर्डिंग आरएमई स्कूल लगायत विद्यालय के गेट लख पसल में अनुगमन कलक बिक्री केला खुला रूप में थरलक छुट्टीजन्य पदार्थ भेट लगवा। टीकापुर नगरपालिका के बजार अनुगमन समिति क्षेत्र में यहीं से आगफे अनुगमन करके सूतीजन्य पदार्थ के कारोबार कर पैना व्यवस्था बारे जानकारी देती बिक्री नई करना निर्देशन देला खुले से फिर कार्यान्वयन नहीं हुलो। सूतीजन्य पदार्थ नियंत्रण तथा नियमन करना एन 2068 के दफा 11 के विद्यालय स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक स्थल के 100 मीटर आंदर पादर सूतीजन्य पदार्थ के बिक्री वितरण कर नहीं होना व्यवस्था करीबा। बाल बालिका के ऊपर सूतीजन्य पदार्थ के प्रभाव नहीं पड़ोस के उद्देश्य के सरकार कानून बना के नियंत्रण करना खोज से फे व्यापारी फे नाफा के लोप में बिक्री करना पाइगिलवा। अनुगमन में सहभागी टीकापुर नगरपालिका के जनस्वास्थ्य शाखा के प्रमुख बल बहादुर रावल विद्यालय आज पादर खुलेआम सूतीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण हुटी रह। विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी को सूर्ती गुटखा खेना कलक व विद्यालय के परिसर के अवलोकन कलक फेला पलक गुटखा के खोल में प्रस्ताव हुल गोटिलवा। स्वास्थ्य तथ्यांक के अनुसार नैसन्ना रोग भर्ती गलक भयावहक अवस्था में पुगलक। विद्यालय स्वास्थ्य संस्था सार्वजनिक स्थल बस पार्क होटल दक्षिण क्षेत्र में धूम्रपार सूर्तीजन्य पदार्थ निशोधित क्षेत्र बनाएके हेकार के रूप में अलग सूर्ती चुरोट के सेवन नियमन करना अलग अलग जनस्वास्थ्य निरीक्षक विमला गेवाली के कहेबा। ज्ञान के अनुसार कुछ होटल संचालन के धूम्रपानी शोधित क्षेत्र लेखबाट आफ्नो रोल मोडल देख पर्ना शिक्षक प्रधानाध्यापक को सार्वजनिक निकायमा बैठक जिम्मेवार व्यक्ति खुलेआम सूतीजन्य पदार्थ के प्रयोग करलक। देखा सिखीमा फे उपभोग बहर्ती रहल व जनस्वास्थ्यमा समस्या ठप्ती रहल गैलबा। जानकी गांवपालिका 9 नंबर वडा कार्यालय सब चिस्यान मेसिन लबा। वडा कार्यालय के चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 के लाख छुट्टे लग 4,50,000 बजट मसे सब चिस्यान मेसिन लबा। वडावासी को नागरिक के मृत्यु पाछा कुन दिन स्वापना पलसे महाधारा सेकना वडा कार्यालय के जनलबा। सब चिस्यान मेसिन वडा कार्यालय के वा आधारभूत जनस्वास्थ्य केन्द्र में धरना हुआ। वडा के नागरिक मरलक प्रदेश मरला को छावा नई समसफ खालो खड़के धर पर्ना दुखद अनुभव वड़ा म सब चिस्यान मेसिन अलग वड़ा अध्यक्ष खगेन्द्र भंडारी बोटिल। खोज खबर में घर विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुन्त्रेवी सामुदायिक रेडियो टीका प्रफेम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ।
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा।

0: महिना के अवसरमा साउदी सरकार नेपाली आम माफी दिलाबा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयकी मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली नागरिक शाही माफी दिलक साउदी अरब सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता प्रकट गर्दै नेपाल सरकार साउदी सरकार हे सहृदयिक कदमकी उच्च प्रशंसा गर्दै यहाँ नेपाल र साउदी अरब बीचके लम्बा समयसी मित्रता सद्भाव प्रघाट द्विपक्षीय सम्बन्धकी प्रतिविम्ब के रूपमा लिलक जनेलबा रियादै स्थित नेपाली दूतावास मार्फत नेपाल सरकार कलक विशेष अनुरोध के आधारमा साउदी सरकार नेपाली कैदी माफी प्रदान कलक परराष्ट्र मन्त्रालय स्पष्ट पर्लबा शाही माफी पहिलक तू नेपाली नागरिक साउदी अरबके आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा करके हाली नेपाल लौटना मन्त्रालय जनेलबा। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा नेपाल टेलिकम सेवाग्राही मैत्री हाली गुणस्तरीय सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनिना निर्देशन देलाबाट संचार मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा सुन्दर स्थित नेपाल टेलिकमकै सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गत लग बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बीएसएस विभाग तथा दूरसंचार कार्यालयकी निरीक्षणकै क्रममा सेवा प्रवाह अभिन प्रभावकारी पारदर्शी डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनिना निर्देशन देलाबाट निरीक्षणकै क्रममा नेपाल टेलिकमकै प्रबन्धक शालिकराम सुविदी सूचना प्रविधि निर्देशनालय मार्फत सम्पादन हुइरहेको कार्य तथा टेलिकमकै बिलिङ प्रणाली बारेमा जानकारी गरेर रहे संचार मन्त्री तिमिल सिन्हा बिलिङ प्रणाली ग्राहक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहकी विषयमा जानकारी लिएर रहे। उहाँके पास उहाँ सुन्दरा स्थित दूरसंचार कार्यालयकी निरीक्षण गर्के नयाँ सिम कार्ड लिन बिल भुक्तानी ई सिम सेवा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी अनुभवके बारेमा सेवाग्राहीसँग जानकारी लिएर रहे। सेवाग्राहीकै कार्यालयमा सेवा लिन लम्बा समय लाइनमा बैठा नै पर्नका के अपेक्षाकृत हाली सेवा प्राप्त हुलक प्रतिक्रिया दिला रहे। निरीक्षण पाछ संचार मन्त्री डाक्टर तिमिर सेना सेवाग्राही थप सहज हाली गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गर्न नेपाल टेलिकम निर्देशन देलाबाट उहाँकै ग्राहकमा व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रूपमा डाटाबेसमा धना व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा एकचो विवरण अत्याधिक गर पाछ पुनः सेवा लिन गैलक बारम्बार उहाँकै काम काज कागजात पेश गर्न अवस्थाकै तत्काल अन्त्य गर्न अवस्थाकै अन्त्य गर्न निर्देशन दिलाबाट सुन्धरा दूरसंचार कार्यालयकै प्रमुख निर्मल राज चटौत सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा डिजिटल बनिना लक्ष्यकै अनुसार नयाँ सिम वितरण केवाईसी अध्यावधिक गुनासो दर्ता गुनासोकै अवस्थाबारे ट्रयाकिङ शुल्क भुक्तानी लगायतकै सेवा अनलाइन मार्फत उपलब्ध गर्न प्रणाली विकास कलक जानकारी दिलाबाट सिम केलाक अनलाइन आवेदन प्रणाली कराइ कार्यान्वयन मनको ग्राहकके अनलाइन मार्फत आवेदन देखा आफ्नो पाए पर्ना सेवा केन्द्रमा सिम प्राप्त गर्न सक्ना व्यवस्था कार्यान्वयन कलको ई सिम केलाफे कार्यालय धाइ नै पर्ना हो। अनलाइनमा चाहिँ सेवा लिन सिक्ना उहाँ बोटिलोबाट उहाँकै सेवा गरी एकचो स्थानमा चाहिँ सबको सेवा उपलब्ध गर्ने उद्देश्य फ्रन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरे वान स्टप सर्भिस सञ्चालनलाई जानकारी दिलाबाट कार्यालयकी निरीक्षण पाछ संचार मन्त्री डाक्टर तिमिल सेना ग्राहक केलाक आधुनिक सेवा विस्तार संघ सेवा के गुणस्तर ग्राहक सन्तुष्टि व्यक्तिगत विवरणकै सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल टेलिकम विशेष धन्यवाद ध्यापनामा जोड़ दिन निर्देशन दिलाबाट। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि सुन्त्रेवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।
5: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्युरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
6: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
7: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भुवाज आगिनी न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी न पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात भट खाई आऊ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी बुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस्त रमपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएको ल बाटी
1: ए ले ठिक बा चल हाली भाटवट खाई हो जाएका हौ सामुएल ज्वेलर्स न घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चोक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846139161
2: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ उच्च जीवन स्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो
3: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर बीसीए बीबीए बीई सिभिल का साथै एमबीए कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइसक्नु हुन अनुरोध छ प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे साथै अनलाइन फारम nast.edu.np मा उपलब्ध छ
2: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट उत्तर भेडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091523312 र 523949

0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 98-49-85-18-08।

0: चेली हेरिदै बालाई लोटरी पढ्यो भने क्या ब्याङ्कको विवरण दिया पैसा खातामी आइजान्छ भन्यो
1: धैदै बा तुमले लोटरी भर्राइ थिया
2: आछिन क्या हो रे चेली लोटरी पढ्या त निको हो
1: कभै नभर्या लोटरी कसरी पढन्छ बा इसा म्यासेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमीले आयाले कबै जनपतिया फोनै आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: आओ आओ तू पायलट से आईना माता झील कर दो था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
5: कुछ नहीं हुई सर पायलट के पंद्रह सफवा रख लू सर नक के घोट रहते हूँ जैसे चेयर सर नक में तो हल्का तो नहीं करना मोर सपो का के छापे ना तो पायलट जाके
4: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
5: नहीं चलेगा सर
4: विद्यार्थी भैया बाबू मुरा से कह रहा हूँ मोर सपो देव गोपाल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपा मूला से थी वाकर मरहल बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ा नहीं भी
5: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
4: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास आसम थे सप्पा दस सकत वह वर्षे मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी डेंटन इतना मल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं का जाना से भी था
6: मुआल सरपंच से सावधान रही मुआलवा मार गई सप्पा है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा समी सपवा दस सिठा संभव हुई सम सबको फोटो खींची वो पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
7: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ बाक पता में एक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में शेयर दिखा
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश